0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर

0: তারতম্যে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি?
1: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Shri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत, स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए

जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where

yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए

0: हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं।

0: इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं। नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
1: हम सब,
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
0: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां

0: अवेलेबल हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में।
0: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, MSc है, MA है और PhD है
1: जी।
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते

0: आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटैलिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है। और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी, सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world, and he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी

0: योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं, और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके, और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक.
1: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he's interacting with them, and he's just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं. और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी.
1: यस एब्सोल्युटली. एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता

होता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पॉस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडूकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत

0: हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: नाउ आई थिंक The enthusiast of performing Vakrasana.
0: So, जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है
0: जी।
2: तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू
0: दी उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
0: जी।
2: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
0: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
0: जी।
2: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
0: जी। गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक

0: आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
1: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
0: जी,
1: बहुत ही
0: और सुंदर। यहां पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहां पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
0: जी,
2: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
0: जी।
2: और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
0: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
2: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
1: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
0: जी।
1: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आप

0: आपकी विरतियाँ ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए। आपकी विरतियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी विरतियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी विरतियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
1: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा, उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन

0: को ग्लोइंग कर देता है, और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
1: बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में योग

0: is Dhyan or meditation, which is a time for our self-assessment and becoming one with the universe. Dr. Pratima?
1: Meditation is not just meditation. It is medication of body as well as mind. क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया. तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है. मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना. तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है.
2: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है.
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें. मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है. सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो. सारी चीजें मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा. मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 months मैं बिल्कुल ठीक हो गया. तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे. और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है.
2: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान. और यहाँ पर अब प्रार्थना
4: शांति
2: मंत्र का पाठ किया जा रहा है.
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
2: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे
2: इसकी
4: धीरे
2: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं. और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं. तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं. आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है. तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई.
0: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
2: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to

0: सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे, और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the honorable prime minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है
0: जी।
2: आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरे पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर

0: कॉन्शियसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शियसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शियसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशनड, एंड एज यू आल्सो मेंशनड नीलम जी, दैट द टुडे वी सॉ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से

0: पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: আকাশবাণী কলকাতা FM রেনবো প্রচার তরঙ্গে এই মুহূর্তের খবর পড়ছে শুভব্রত মুখোপাধ্যায়। কলকাতায় রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যোগ আমাদের শেখায় কি করতে হবে আর কি করা উচিত নয়। তিনি বলেন, যোগ অনুশীলন বিশ্ব শান্তির পথ প্রদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা রাখে। এদিন প্রধানমন্ত্রী যোগ অনুশীলনের মাহাত্ম্য তুলে ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে শ্রী মোদী বলেন, আশেপাশের দুনিয়াকে জানা ও তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যোগ সেই ভূমিকা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে ভারতীয় নৌবাহিনীর 3টি জাহাজকে নৌবহরে অন্তর্ভুক্তি করবেন। দোনাগিরি, সংশোধক এবং অগ্রয় নামে এই জাহাজগুলি কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স নির্মাণ করেছে। স্নাতক স্তরে মেডিকেলে ভর্তির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ইউজি 2026 আজ ফের গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর 2টায়। দেশের 551টি শহর ছাড়াও বিদেশ এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সিসিটিভি সিস্টেম জ্যামার, আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই, প্রশ্নপত্র বহনের জন্য জিপিএস সম্বলিত গাড়ির মতো বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে নরওয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জেনারেটিভ এআই টুল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চলেছে। পাশাপাশি উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহারে বিধিনিষেধ আনা হচ্ছে। আগস্টের শেষ ভাগে শুরু হতে চলা নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হবে। বিশ্বকাপ ফুটবলে আজ গ্রুপ ইর ম্যাচে ইকুয়েডর ও কুরাসাওয়ের মধ্যে ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে। গতরাতে গ্রুপ ইর অন্য ম্যাচে জার্মানি আইভরি কোস্টকে 2-1 গোলে হারিয়ে দিয়েছে। গ্রুপ এফ এর ম্যাচে নেদারল্যান্ডস সুইডেনকে 5-1 গোলে হারিয়ে দেয়। গ্রুপ এফ এর অন্য ম্যাচে আজ তিউনিশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা শুরু হবে ভারতীয় সময় সকাল 9:30। এই মুহূর্তে

10:30 और 40 सेकंड सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में हूँ देव जानी आप सभी सुनने वालों के साथ। और ये कार्यक्रम कई भागों में बटा होता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ हम बातें करते हैं आज के दिन के बारे में, बीते हुए कल के बारे में, संगीत के बारे में, हमारे बारे में। सुनते रहिए, साथ रहिए, क्योंकि आप हैं देव जानी के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

que din. आज के दिन यानी कि 21 जून का दिन आप सभी को मालूम है कि ये एक बहुत बहुत खास स्पेशल सा दिन है। में लंदन के सेंट पॉल्स कैथेड्रल की नींव रखी गई थी आज के दिन यानी 21 जून 1675। में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद से इस्तीफा दे दिया था आज के दिन। 1970 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल स्टाडियो एस्टेका मेक्सिको सिटी, ब्राजील और पेले विश्व कप 3 बार जीतने वाली पहली टीम और खिलाड़ी बने जिन्होंने 107,412 दर्शकों के सामने इटली को 4-1 से हराया। आज के ही दिन 1982 में फ्रांस में फेट डेला म्यूजिक की शुरुआत हुई थी जो आगे चलकर वर्ल्ड

म्यूजिक डे में तब्दील हो गया। 2006 में प्लूटो के नए खोजे गए चंद्रमाओं को आधिकारिक तौर पर निक्स और हाइड्रा नाम दिया गया। 2014 में आज के ही दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाने की घोषणा हुई थी। आप भाग्यशाली हैं अगर आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज एक बहुत बहुत खास दिन है। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और साथ ही साथ इंटरनेशनल योगा डे भी है। और साथ ही साथ और कौन से लोग हैं जो अपना आज जन्मदिन मनाते हैं या उनकी जयंती हम मनाते हैं, पता कर लेते हैं। 1905 फ्रेंच फिलोसोफर एंड राइटर जॉन पॉल सार्त्रे का जन्म हुआ था आज के ही दिन। 1953 में पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का जन्म हुआ था। 1955 फ्रेंच फुटबॉलर मिशेल प्लातिनी का जन्म हुआ था आज के ही दिन। और आज अपना जन्मदिन मनाते हैं जुरासिक वर्ल्ड ख्यात अमेरिकी अभिनेता क्रिस प्रैट, जिनका जन्म हुआ था 1979 में आज के ही दिन यानी 21 जून।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

सुन रहे आप 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप देवजानी के साथ, और उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड स्पेशल बहुत खास, जहां हम बातें कर रहे हैं संगीत की, स्वास्थ्य की, योगा की, आपका मनोरंजन हो रहा है गीतों के जरिए, खूबसूरत खूबसूरत गीतों के जरिए। 10:45:50 थोड़े से सफर की और गुंजाइश बाकी है, थोड़ी बातें और हैं और कुछ गीत भी हमारे साथ और हैं, तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं।

Culture. कोलकाता कल्चर यानी शहर कोलकाता और उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स हैं आज जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, अगर चाहें तो आप अपने वीकेंड को उसी तरह से सजा सकते हैं। कल शहर में एक बड़ा सा कंसर्ट था हरिहरन एट 50 इयर्स नजरुल मंच में, और आज क्या है, आज है एको नचिकेता महाजाति शोधन कोलकाता में एक म्यूजिकल शो, और इसके साथ ही साथ 12वीं फेल बाय अजय राज नाम से एक कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी शो है। उसके बाद माहौल ओपन माइक, यहाँ एक पोइट्री सेशन है।

0: और इसके साथ शाहरुख एंड फ्रेंड्स नाम से स्टैंड अप कॉमेडी शो भी है शहर में. सॉसी बॉयज अ डुओ शो बाय विक्टर एंड साहिल, अगेन अ सरप्राइज एक्ट या शो. और इस तरह के कई सारे वर्कशॉप्स हैं जहां आप या आपके बच्चे शामिल हो सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों के साथ शामिल हो सकते हैं. सिर्फ थोड़ी सी जानकारी रखने की, थोड़ी सी अवेयर रहने की देर है बस, और बाकी आप अपने वीकेंड को या फिर किसी भी दिन को अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं, ताकि आपका वीकेंड या आपका कोई भी दिन, कामकाजी दिन हो या फिर कोई भी दिन हो, वो एकदम रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग बना रहे.
1: कोलकाता कल्चर. बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप. नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर. नॉनस्टॉप गपशप. नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर. एफएम रेनबो पर.
0: कार्यक्रम की आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं. समय हो रहा है 10:53:47. 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का हमारा ये सफ़र जारी रहता है नॉनस्टॉप गपशप के साथ, और हम लेकर आते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से गीत, बातें कुछ और हमारे इस दिन के बारे में, या फिर ये दिन आपको क्यों याद रहे इस बारे में बहुत सारी बातें साझा करते हैं हम. हमारे साथ होते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे नगमे, और इसी तरह से आज का दिन भी सजा हुआ था इसी तरह की बातों से और गीतों के साथ. खास करके आज स्पेशल दिन है, इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे. आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से हमारी ओर से इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं. आपका जीवन स्वस्थ रहे, संगीतमय रहे, इसी दुआ के साथ, इसी आशा के साथ मैं देवचानी लेती हूँ आज के एपिसोड ऑफ नॉनस्टॉप गपशप से इजाज़त. दोबारा मिलूंगी आपसे बहुत जल्द इसी चैनल में. पर अगर आप मुझे आज फिर से दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं एफएम गोल्ड 100.1, जहाँ पर मैं 11:10 से आपके साथ रहूँगी लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद.

जी हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी मतलब ये बात उमड़ उमड़ के आ रही है कि वाकई में आज का दिन बहुत गजब का है, गजब का है। और मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आज आप फील गुड वाली जो फीलिंग है वो आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। और जाहिर सी बात है कि मतलब कोई भी डे होता है तो हमें सेलिब्रेशन में बड़ा मजा आता है। अब जब योगा दिवस होगा तो योगा में तो आपको मतलब शरीक होना पड़ेगा, योगा को करना पड़ेगा। और क्या है कि मतलब जब आप योगा करते हैं ना, तो बिलीव मी जो फीलिंग होती है उसके बाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली होती है। मानो कि इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, लगता है कि मतलब एकदम स्ट्रेस फ्री हो गए हैं और मतलब फुल ऑफ फ्रेशनेस। तो बस आज के दिन ही मत सिर्फ कीजिएगा, रोजाना कीजिएगा, क्योंकि योग भगाए रोग। और जाहिर सी बात है कि आजकल के भाग दौड़ वाली जिंदगी में ज्यादातर लोग जो है ना वो फास्ट फूड खाने के आदि हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आप फास्ट फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर योग को साथ रखेंगे तो भले चंगे रहेंगे। तो अभी जो गाना आपने सुना, गजब का है ये दिन, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में, फिल्म सनम रे से। और अगला गाना जो है उसे हमने लिया है फिल्म पति पत्नी और वो से। कुमार ने इसे कलमबद्ध किया है, रोचक कोहली ने इसे संगीतबद्ध किया है, और आवाजें हैं रोचक कोहली, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की।

चलिए अगला गाना बिल्कुल तैयार है आपके लिए, और ये अगला गाना है फिल्म दिल जंगली से, गजब का है दिन, जुबैन नौटियाल और प्रकृति कक्कड़ की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है कौन सा कार्यक्रम? अजी म्यूजिकली योर्स तो आपने ट्यून कर रखा है और सुन रहे कार्यक्रम तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का विद आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि अब मैं आपसे बॉलीवुड की एक खबर आपसे साझा करूंगी। ऐसा है कि बॉबी देओल के अभिनय की मुरीद है आलिया भट्ट। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये खबर बड़ी नई है, तो ऐसे ही तड़केदार नई खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से हम लेकर आते हैं आपके लिए। ऐसा है कि आलिया के अनुसार पर्दे पर बॉबी देओल की मौजूदगी बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह बेहद शांत और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, जब हम साथ में दृश्य फिल्मा रहे थे तब मुझे ये महसूस हुआ कि वह कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बेहद शानदार होता है, लेकिन उन्हें स्वयं भी इसका एहसास नहीं होता। वे बहुत अच्छे अभिनेता और उनका अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगता है। आलिया ने बताया कि फिल्म के निर्देशक शिव रेवल जो हैं, वो अक्सर किसी दृश्य के बाद बॉबी देओल की प्रशंसा करते थे, लेकिन बॉबी स्वयं ये नहीं समझ पाते थे कि उन्होंने ऐसा क्या विशेष किया। यही सहजता उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती है। आलिया भट्ट ने कहा कि बॉबी देओल के साथ काम करना उनके लिए बेहद प्रेरणादायक अनुभव रहा। तो चलिए अगला गीत सुनाती हूँ आपको आलिया भट्ट की आवाज में, फ्रॉम द मूवी डियर जिंदगी। गुलजार ने कलमबद्ध किया है इस गीत को और इलैया राजा ने संगीतबद्ध किया है।

ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के अभिनय की तारीफ करता हो, मतलब ये बात तो होनी ही चाहिए। और जब तक ये बात अपने अंदर ये इंसान कोई भी कलाकार महसूस करता है, तब तक उसके सीखने की बात जो है आगे बढ़ते रहती है। और कहीं ना कहीं से जब आदमी देखता है कि नहीं, सामने वाला जो है उसका काम वाकई में तारीफ़ काबिल है, तो मतलब अपने अंदर भी कुछ ऐसी ही बात लाने की कोशिश करता है हर कलाकार। अब मैं आपको बता दूं कि अभिनेत्री अंजना सुखवानी ने क्या कहा, उन्हें नसरुद्दीन शाह की अदाकारी देखकर मतलब वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने कहा कि मतलब नसरुद्दीन शाह की अभिनय क्षमता इतनी प्रभावशाली है कि उन्हें अभिनय करते देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इम्तियाज अली की फिल्म में वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिल्म का नाम है, मैं अहम भूमिका निभाने वाली अंजना सुखवानी ने अपने सह कलाकारों नसरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ के साथ जो काम किया और उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने जो तारीफ की नसरुद्दीन शाह की, तो वाकई में नसरुद्दीन शाह की जो एक्टिंग होती है वो वाकई तारीफ काबिल होती है। और अब अगला गाना आप सभी के लिए, फिल्म इश्क फॉरएवर से समीर अंजान ने इस गीत को कलमबद्ध किया है, नदीम सफी ने इसे संगीतबद्ध किया है। इस गीत को आप सुनेंगे जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का अपनी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और अब मैं मतलब बिग बी से संबंधित

0: कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगी, क्योंकि प्रोग्राम हो तीन का तड़का और मतलब बिग बी से जुड़ी अगर कोई बात हो जाए ना, तो फिर वो तड़का कुछ अलग ही होता है एंटरटेनमेंट का। अमिताभ बच्चन ने बयां किया दर्द, अब ये किस तरह का दर्द है सुनिए। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहे और अपने फैंस के लिए हर दिन कुछ न कुछ अपडेट साझा करते हैं। अमिताभ अपनी लाइफ अपडेट भी फैंस के साथ शेयर करते हैं। उनके ब्लॉग भी काफी चर्चित रहते हैं, जिस पर वे अपनी दिलचस्प शैली में रोजाना ही चीजों को बयान करते हैं, रोजाना की बातों को और चीजों को बयान करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट साझा किया जिसमें ऐसी बात कही जो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर आप उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अमिताभ सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, लेकिन आज भी वे शुरुआती दौर जितनी ही कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छे काम की तलाश में रहते हैं। हालिया पोस्ट में उन्होंने जो कुछ कहा वो आपको मैं बताना चाहूंगी। इंडस्ट्री में दशकों बिताने के बाद भी अमिताभ बच्चन अपने काम को उसी लगन और खुद को परखने की आदत के साथ करते हैं, जिसने उनके करियर को खास बनाया। हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में इस अनुभवी एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने काम के एक हिस्से को दोबारा किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। इस फलसफे के पीछे जो मतलब क्या कहूं, ये जो उनका एक फॉर्मूला है ये नई नहीं है, वो शुरू से ही ऐसे ही थे। जब तक उन्हें नहीं लगता कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया है, वो उसे बार बार करना चाहते हैं। जब तक उसे उन्हें ना लगे कि वो संतुष्ट हुए तब तक, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी से जुड़ी एक और बात आपसे साझा करूंगी, लेकिन पहले सुनते हैं बोल बच्चन।
1: I can talk English, I can walk English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo. Because their minds are very nerr.
2: Excuse me, please.
3: मेरे पिताजी कहा करते हैं? That the whole country of the system is a position of the hemoglobin in the atmospheric pre... Atmospheric pre... Atmospheric pre...
4: Hey! You see, sir... Debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad, where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir, Bachchan is also a rhythmic rhyme replica of Bol Bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game.

0: दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर।

0: यू सी सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा बच्चन।
1: चलिए इस गीत को आपने सुना फिल्म बोल बच्चन से, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, हिमेश रेशमिया और कई गायक इसमें शामिल हैं। और फिलहाल आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ इन्हीं से जुड़ी आपसे और भी बातें साझा करूंगी, तो इन्होंने अपने, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, काम तो काम है, काम तो काम है, काम तो काम है, तीन बार, यानी कि आप समझ सकते हैं कि काम पे कितना तवज्जो देते हैं। उन्होंने आगे क्या लिखा, आज 12 शॉर्ट फिल्में शूट की, 2 स्टिल शूट की और अब आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनके लिए फैन से जुड़े रहने का प्रोसेस ऐसा है जो कभी नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने लिखा, जुड़ने का ये प्रोसेस बिना किसी देरी के आज का काम, बाकी सब तो चलते रहेगा, ये रुकना नहीं चाहिए। तो इतने कर्मठ हैं। और बता दूं कि अमिताभ बच्चन बहुत ही पंचुअल इंसान है, मतलब अगर 5 बजे पहुंचना है तो वो 5 से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती है और उनकी पंचुअलिटी की लोग मिसाल देते हैं बॉलीवुड में। और फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म लव आजकल से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: चलिए दोस्तों, शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में फिल्म सितारे जमीन पर फिल्म से आपको सुनवाऊंगी ये गीत गुड फॉर नथिंग। और इसे सुनते सुनते आगे दीजिए अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। फिर मुलाकात होगी शाम को, छाया लोक लेकर आऊंगी शाम को 7 बजे और रहूंगी आपके साथ 7 से 9 लेकर यादों की बारात।
1: दीदा, दीदा,

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: यादों की बारात। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो के साथ एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी श्रोताओं का प्यार भरी शुभ संध्या नमस्कार के साथ वेलकम करती है, खैर मकदम करती है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आपके ही पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक में। दिल से दिल तक का हमारा और आपका कनेक्शन इसी चैनल पर है जो म्यूजिकली योर्स है और रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। लेकिन आपको बता दूं कि अभी ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन सकते हैं। आज की शाम का कार्यक्रम छायालोक के सेगमेंट यादों की बारात की शुरुआत करना चाहूंगी इस ट्रैक के साथ, और ये गाना मैंने लिया है फिल्म कुर्बानी से। नाजिया हसन की आवाज में इस गीत को सुनेंगे, गीतकार इंदिवर और संगीतकार बिड्डू।

बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी 1980 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक एक्शन थ्रिलर सुपरहिट फिल्म है और जिसका निर्माण निर्देशन से लेखन और अभिनय फिरोज खान ने किया था और फिल्म में विनोद खन्ना, जीना तमान, अमजद खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी और कादर खान सह कलाकार हैं और इस 1980 की सुपरहिट फिल्म कुर्बानी प्यार, अपराध और दोस्ती पर आधारित एक शानदार एक्शन थ्रिलर है। ये फिल्म दो दोस्तों राजेश और अमर की कहानी है जो एक ही लड़की शीला से प्यार करने लगते हैं। कहानी में अपराध, धोखे और अंततः एक दोस्त द्वारा दूसरे के लिए किए गए बलिदान का भावुक सफर दिखाया गया है। इस फिल्म का बजट था 2.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 25.8 करोड़। और अब इसी फिल्म से आपको सुनाना चाहूंगी एक और गीत, लैला ओ लैला, अमित कुमार और कंचन और कोरस मतलब साथियों की आवाज में। इंदिवर ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी।

जी हाँ दोस्तों, यादों की बारात में अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी वो है फिल्म घायल। सनी देओल की सुपरहिट फिल्म घायल 22 जून 1990 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। घायल 1990 की एक सुपरहिट फिल्म थी और इसमें मुख्य कलाकार सनी देओल, जिन्होंने अजय का किरदार निभाया, मीनाक्षी शेषाद्री जिन्होंने वर्षा का किरदार निभाया, अमरीश पुरी जिन्होंने बलवंत राय का किरदार निभाया, निर्देशक राजकुमार संतोषी, ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। और इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्र पुरस्कार और सनी देओल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड शामिल है। सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की एक ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म है जिसे राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया है। ये फिल्म एक युवा बॉक्सर अजय मेहरा की कहानी है जो अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने और एक भ्रष्ट उद्योगपति को सजा दिलाने के लिए कानून को अपने हाथों में ले लेता है। कहानी का सारांश अगर मैं बताऊं आपको, इन शॉर्ट अगर उसकी स्टोरी बताऊं तो शुरुआत में अजय मेहरा, सनी देओल एक महत्वाकांक्षी बॉक्सर है जो ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर जाता है। जब वह दिल्ली लौटता है तो पता चलता है कि उसका बड़ा भाई अशोक गायब है। पुलिस से कोई मदद ना मिलने पर अजय खुद अपने भाई को ढूंढता है, लेकिन उसे अशोक का शव मिलता है। उसके उलट भ्रष्ट और मैंने इसी के जो है, मतलब अगर देखा जाए उल्टे साइड में कि भ्रष्ट और ताकतवर जो है उद्योगपति बलवंत राय अमरीश पुरी जो है वो अजय पर ही उसके भाई की हत्या का झूठा आरोप लगा देता है। और आगे क्या होता है, अजय को जेल हो जाती है। अपनी बेगुनाही साबित ना हो पाने के कारण वह जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ मिलकर भागने की योजना बनाता है। और बदला और न्याय फिर कैसे आगे बढ़ती है इस कहानी में, वो जेल से बाहर आकर अजय सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए बलवंत राय के काले कारनामों का पर्दाफाश करता है और अंततः अपने भाई की मौत का बदला लेता है। अपनी शानदार पटकथा और दमदार अभिनय के लिए इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। तो अब सुनते हैं इस फिल्म से 2 गाने आपको सुनवाऊंगी। पहला गाना है सोच ना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, आशा भोसले, कुमार शानू और शब्बीर कुमार की आवाज में। और दूसरा गाना बैक टू बैक आप सुनेंगे अमित कुमार और एस जानकी की आवाज में।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: यादों की बारात।
2: ऐसा है दोस्तों कि ये है 2026 जून के महीने का तीसरा वीकेंड, और जून के महीने के तीसरे वीकेंड में, मतलब इन द पास्ट बॉलीवुड में कौन कौन सी फिल्में, बहुत सारी फिल्में थी जो रिलीज हुई थी और जून के तीसरे वीकेंड में, तो उन्हीं में से कुछ फिल्में मैं चुनकर लाई हूँ। और इसी सिलसिला में अब आपको जो अगली फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ, वो फिल्म का नाम है मिली। 20 जून 1975 को रिलीज हुई मिली ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक बेहद भावुक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अपनी शानदार कहानी और सदाबहार संगीत के लिए जाने जाने वाली ये फिल्म मानवीय संवेदनाओं और प्यार की ताकत को खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। फिल्म की कहानी, यानी कि अगर मैं कहूं संक्षेप में, तो फिल्म की कहानी मिली नाम की एक जिंदा दिल और हंसमुख लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। उसी अपार्टमेंट में शेखर नाम का एक उदास और अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट युवक रहने आता है, जो अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कलंक के कारण दुनिया से कटा कटा रहता है। शुरुआत में दोनों के बीच नोक झोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे, अच्छा चलिए धीरे धीरे शेखर

और मिली कैसे मिलते हैं और कैसे उनमें प्यार पनपता है ये तो बताऊंगी ही, लेकिन पहले एक गाना सुना दूं। कौन सा? मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंसती। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में इस गीत को सुनिए, फिल्म मिली से।

ऐसा था कि शुरुआत में शेखर और मिली दोनों के बीच नोकझोंक होती, लेकिन धीरे धीरे शेखर को मिली के प्यार का एहसास हो जाता है। ठीक उसी समय शेखर को पता चलता है कि मिली एक लाइलाज बीमारी ब्लड कैंसर से पीड़ित है। सच्चाई जानने के बावजूद शेखर मिली का साथ नहीं छोड़ता, बल्कि वो उससे शादी करने का फैसला करता है ताकि उसका इलाज करवा सके। इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में आपने जया बच्चन को देखा, मिली के रूप में मतलब तब वो जया भादुरी, मिली जो है वो बहुत ही नटखट सी थी। अमिताभ बच्चन ने शेखर दयाल का किरदार निभाया था और इस फिल्म में आपने अशोक कुमार को भी देखा, मिली के पिताजी, उषा किरण, शारदा खन्ना, आसरानी और ये लोग जो है ये मतलब अतिथि भूमिका में थे। संगीत जो है बहुत ही सुंदर था इस फिल्म का। संगीतकार थे एस डी बर्मन द्वारा, सारे जो इस गाने में गाने के संगीतबद्ध है वो सारा एस डी बर्मन ने किया था। और अब इसी फिल्म से एक अगला गाना आपको सुनाना चाहूंगी, लेकिन ये भी बता दूं कि ये फिल्म अगर आपने देखा है तो वाकई में तरोताजा हो गया होगा जहन में, लेकिन अगर नहीं देखा है तो एक बार बिल्कुल देखिएगा। इसके सभी गाने आज भी लोगों के दिलों में

बसे हैं, चाहे वो बड़ी सुनी सुनी है किशोर कुमार की आवाज़ में, या आए तुम याद मुझे किशोर कुमार की आवाज़ में, या मैंने कहा फूलों से लता मंगेशकर की आवाज़ में। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिली फिल्म के लिए जो है दर्शकों और समीक्षकों का बहुत प्यार मिला और फिल्म बहुत हिट रही। हालांकि ये फिल्म 1975 के शोले और दीवार जैसी बड़ी एक्शन फिल्मों के बीच रिलीज हुई थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: आप सुन रहे हैं म्यूजिकली एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम छायालोक में यादों की बारात, और यादों की बारात लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत, और रहूंगी रात के 9 बजे तक। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि 8:02 के लिए आप स्थानीय समाचार बंगला में सुनेंगे, और 8:02 पर हाजिर हो जाऊंगी मैं लेकर यादों की बारात का पार्ट टू। और ऐसा है दोस्तों कि ये एक कंटिन्यूड प्रोग्राम रहेगा और 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। अब यादों की बारात में अगली फिल्म कौन सी है और वो कब रिलीज़ हुई थी, तो आपको बता दूं मैं बात करना चाहूंगी फिल्म सितमगर की। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 21 जून 1985 को। एक बॉलीवुड एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म थी, और इस फिल्म से एक गाना सुनाऊंगी आपको अभी, और उस गीत को सुनते सुनते हम रुक करेंगे बंगला समाचार की ओर, और वापस जब जुड़ेंगे 8:02 पर तो इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी। लेकिन फिलहाल ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं मैं 107 FM रेनबो पर। और आज ये कार्यक्रम आप जो है ऐप पर सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। और ऐसा है दोस्तों कि आज छायालोक में संडे इवनिंग आपके लिए रहता है यादों की बारात। और यादों की बारात में हम वीकेंड स्पेशल फिल्मों का जिक्र करते हैं, यानी कि आज जो है वो जून महीने का तीसरा वीकेंड है। और जून महीने के ही तीसरे वीकेंड में बॉलीवुड में कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई थी, ज़्यादातर उसके बारे में हम बताते हैं और उस फिल्म से जुड़ी कहानी या फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करते हैं।

और ब्रेक के पहले मैंने, न्यूज ब्रेक के पहले कहा था कि जी हाँ मैं बताऊंगी आपको फिल्म सितमगर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 21 जून को और 1985 में, एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के मुख्य हीरो धर्मेंद्र और ऋषि कपूर थे, जबकि मुख्य हीरोइन के रूप में परवीन बाबी और पूनम ढिल्लो थी। फिल्म की कहानी अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो ये फिल्म मुख्य रूप से बदले और रोमांस की कहानी पर आधारित थी। कहानी एक ऐसे व्यक्ति धर्मेंद्र के इर्द गिर्द घूमती है जिसे बचपन में एक अमीर घर में नौकर के तौर पर प्रताड़ित किया गया था और उसी घर की एक लड़की से कथित अफेयर का इल्जाम लगाकर सजा दी गई थी। बड़े होने पर जब उसे मौका मिलता है तो वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसी लड़की पूनम ढिल्लो का अपहरण कर लेता है। बाद में कहानी में कई रोमांचक मोड़ आते हैं जहां ऋषि कपूर हीरोइन के रक्षक के रूप में सामने आते हैं और धर्मेंद्र का किरदार एक अलग रंग दिखाता है। फिल्म के गाने, फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन आड़ी बर्मन ने तैयार किया था और इसके गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। फिल्म के गाने काफी मर्मस्पर्शी और बेहतरीन थे। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। तो फिलहाल आपको यही गाना मैं सुनाती हूँ, मौसम प्यार का।

ऐसा है दोस्तों कि अब अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगी वो है संगम, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 जून 1964 को भारतीय। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय रोमांटिक ड्रामा है और ये आरके फिल्म्स की पहली रंगीन फिल्म थी। मुख्य अभिनेता के तौर पर आपने राज कपूर को देखा सुंदर खन्ना के रूप में, वैजयंती माला को राधा खन्ना के रूप में, राजेंद्र कुमार को मैजिस्ट्रेट गोपाल वर्मा के रूप में और ललिता पवार को मिसेस वर्मा के रूप में, गोपाल की माँ। और फिल्म संगम की कहानी अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो ये कहानी दो दोस्तों, सुंदर यानी राज कपूर और गोपाल यानी राजेंद्र कुमार और राधा वैजयंती माला के बीच के प्रेम त्रिकोण पर, लव ट्रायंगल पर आधारित है। सुंदर और गोपाल दोनों राधा से प्यार करते हैं, लेकिन राधा गोपाल को चाहती है। परिस्थितिवश सुंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है और युद्ध के मोर्चे पर चला जाता है। उसके लापता होने और मृत मान लिए जाने के बाद राधा और गोपाल एक दूसरे के करीब आते हैं और शादी कर लेते हैं। हालांकि सुंदर जीवित लौट आता है और उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में एक भयानक उलझन पैदा हो जाती है। और बाकी फिल्म त्याग, गलतफहमी और प्रेम की परिभाषा पर केंद्रित है। बहुत ही हिट फिल्म रही थी और चलिए इसी फिल्म से मैं दो गाने सुनवाऊंगी। पहले सुनवाऊंगी हर दिल जो प्यार करेगा, लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, और दूसरा गाना आपको सुनवाऊंगी मुकेश की आवाज़ में इसी फिल्म से, दोस्त दोस्त ना रहा। बैक टू बैक दोनों गाने सुनेंगे।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 8:23:34 और इस वक्त आप जुड़े हैं, जी हाँ जुड़े हैं, अपने ही दिल से दिल तक वाले चैनल पर और कार्यक्रम सुन रहे हैं ऐप पर। और आज की शाम आप सुन रहे हैं

0: विक्रम जी, हाँ, यादों की बारात। और फिलहाल आपने दो गाने सुने फिल्म संगम से, और फिल्म संगम अपनी कहानी और किरदारों के कारण फिल्म को साहसिक और अपने समय से बहुत आगे माना गया। इन सभी चीज़ों ने फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता में बहुत योगदान दिया। संगम 18 जून 1964 को रिलीज़ हुई, ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने दुनिया भर में 8 करोड़ की कमाई की थी तब, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। और मुगले आजम जो रिलीज हुई थी 1960 के बाद दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म की बात करूं तो ये फिल्म 1964 में सोवियत संघ में रिलीज हुई थी। इसने माइकल बे की युद्ध फिल्म पर्ल हार्बर जो 2001 को प्रेरित किया, और जो है मतलब ये फिल्म कन्नड़ भाषा में भी रिलीज हुई थी 1981 में स्वप्ना नाम से। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे यादों की बारात में किस फिल्म का जिक्र करेंगे, आपको उस फिल्म से गाना सुनवाएंगे तो आप समझ ही जाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं मन की बात जो आप सुनेंगे इस महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

चलिए दोस्तों, अब बता देती हूँ कि अब मैं किस फिल्म के बारे में बात करूंगी सेगमेंट यादों की बारात में। तो बता दूं कि फिल्म का नाम जो है वो हर एक के शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इतना क्लू देने पर तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ, मैं किस फिल्म की ओर इशारा कर रही हूँ। अगर आपने सोचा है कि वो फिल्म दिल है तो बिल्कुल सही। ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी, एक सुपरहिट बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान जो है राजा का किरदार निभाए और माधुरी दीक्षित मधु के मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अपने शानदार संगीत, आनंद मिलंद और प्रेम कहानी के लिए जानी जाने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। 22 जून 1990 को रिलीज हुई थी। और कहानी और सफलता की बात करूं तो ये फिल्म एक रूढ़िवादी और अमीर पिता के विरोध के बावजूद दो कॉलेज के छात्र राजा और मधु की प्रेम कहानी पर आधारित है। फिल्म अपने गानों के लिए भी बेहद लोकप्रिय हुई, जिसके लिए आनंद मिलंद और गीतकार समीर को काफी सराहना मिली। माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। और फिलहाल आपके लिए ये गाना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 8:42 और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग ऐप पर। और ऐसा है कि अब यादों की बारात सेगमेंट में मैं अगली कौन सी फिल्म है जिसके बारे में बताऊंगी और गाने प्ले करूंगी आपके लिए, तो सुनिए संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित कल्ट म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम 18 जून 1999 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। प्यार और त्याग पर आधारित इस शानदार फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने भरपूर प्यार मिला दोनों से, और फिल्म से जुड़े आपके सभी, मतलब क्या कहूँ कि मतलब आप जो फिल्म देख चुके हैं वो तो उन्हें पता ही होगा कि हाँ इस फिल्म में मुख्य किरदार किसने निभाया था और कौन कौन थे। और मान लीजिए बाय द वे जिन्होंने नहीं देखा हुआ है उनके लिए मैं बता दूँ कि स्टार कास्ट की बात करूँ तो इसमें

सलमान खान समीर के रूप में, ऐश्वर्या राय नंदिनी के रूप में, अजय देवगन वनराज के रूप में, इनके अलावा विक्रम गोखले पंडित दरबार के रूप में, स्मिता जैकर और जोहरा शहगल ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। और संगीत की बात करूं तो फिल्म का संगीत इस्माइल दरबार द्वारा तैयार किया गया था और इसके बोल महबूब ने लिखे थे। ये फिल्म अपने सदाबहार और भावपूर्ण संगीत के लिए जो है जानी जाती है। तो चलिए आपको एक गाना सुनवाती हूँ इस फिल्म से। कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज में इस गीत को सुनेंगे।

1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने जो है इसको भारी सफलता मिली। इस फिल्म को इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने कुल 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई सारे 7 या 8 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान जीते थे। और अब आगे यादों की बारात में किस फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूँगी, चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। और वो फिल्म जो है बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन हाँ वो फिल्म भी काफ़ी सराही गई थी और लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी फिल्म है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि वो कौन सी फिल्म है। और ऐसा ना करूं कि पहले आपको उस फिल्म से एक गाना सुनवा दूं और गाना सुनने के बाद जो है आप समझ ही जाएंगे कि हाँ मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह 21 जून 2019 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। 2019 में 21 जून को शाहिद कपूर और कियारा अडवाणी इसके मुख्य स्टार कास्ट थे। फिल्म को 65वें फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड्स में ढेरों नामांकन मिले और इसके गाने बहुत ही ज़्यादा हिट हुए थे। और इसमें जो स्टार कास्ट थे, मतलब मुख्य किरदार के रूप में आपने देखा, वो आपको बता ही चुकी हूँ। और इस फिल्म की कहानी अगर मैं बताऊँ तो ये फिल्म जो है 2017 की सुपरहिट तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। तो चलिए अब देर ना करते हुए मैं सोच रही हूँ कि इसी फिल्म से क्यों ना आपको एक नहीं बल्कि 2 गाने सुनवाऊँ। लेकिन पहले आपको सुनवाऊंगी इसी फिल्म से उस गीत को जिसे आप सुनेंगे विशाल मिश्रा की आवाज में, जिसे कलमबद्ध किया मनोज मुंतशिर ने और विशाल मिश्रा ने इस गीत को संगीतबद्ध भी किया है। कैसे हुआ

आपको बता दूं कि कियारा आडवाणी जो हीरोइन थी इस फिल्म में, उन्हें हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया 2020 में इस फिल्म के जरिए। और अब बस शेष 5 मिनट बचे हैं आपके और मेरे बीच आज के इस कार्यक्रम यादों की बारात में। हाँ, ये और बात है कि फिर किसी रोज़ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल यादों की बारात में आज मैं किन किन फिल्मों को लेकर आई थी बता दूं एक बार। कुर्बानी, घायल, मिली, सितमगर, संगम, दिल, हम दिल दे चुके सनम और कबीर सिंह। और फिलहाल चलते चलते आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में छोड़े जा रही हूँ। और ये ज़रूर कहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि ये उत्सव है, और ये वो उत्सव है जिसे हमें रोज़ मनाना चाहिए, रोज़ खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी की तिजोरी जो है वो योग से ही जुड़ी हुई है। तो योग जो करते हैं वो हमेशा निरोग रहते हैं, और अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो वेल्दी तो आप रूपी ही हो जाएंगे। और यही कहूँगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। इसी के साथ अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

FM Rainbow Team. Tine ke tin. Tine ke tin. Ganer hat trick. Ganer hat trick. एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।